जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तूठ

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौन दया में ताय। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु।

आगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जिया ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। ऐस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया दे पावन स्वरूप दे सुखासन दी सेवा हुई है। सोहेला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़दिया सेवा करदिया भुल चुक दी खीमा बख्शना। आप जी दे पाने विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहन। आप दे पाने विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुकम तुम्हारा

मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हराय,

संकृपादयंतर जाग नानक सिमरन पूरा पाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन ने चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन आसन

सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेदो पाए हर सिमरन भये सिद जति दाते हर सिमरन चौंकुंठ जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर का।

शुद्ध गावे काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम द्रे पतत बहुमूच बाहत सियाणप जमका पहो व्यापै अनक जतन कर त्रिशना त्रापै भेख अनेक अगन्ने बुझै कोट पाप दरगै नहीं सज्जै छूट सुनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल अमर करतूत सगरी जम डाने गोविंद भजन मंदिर नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बुलै सह सुभाए

पथ जाए अष्टपदी। दस वसूले पाछे पावे एक भस्त कान भी खोट गवावे एक भीना दे दस भी हरले तो मुड़ा कहो कहा करे जस ठाकुर सो नाही सारा ठाकुर की जय साध नमस्कार। जाके मन लागा बड़ा मीठा सर्व सुख ताहू मन बुठा जिजन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया। आगंत शाबनी दे राज खात पीत भरते अनंत उलास अपनी अमान कश बहुर शाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आगे राखे।

प्रसाद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग वरखत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम

प्रकाश प्रभु दयात कमल विकास प्रभ सन बस मन सोए प्रभ दयात मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया भो कशु न किनु लया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नाल किनकै कशु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साध के संग मुखूजल होत साध संग माल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगट सुगयान साधक संग विजय ब्रह्म रेरा साध संग सबोतन भेरा साधक संग भाय नाम रतन साधक संग एक पर जतन साध की महिमा बरने गौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग है सबकी रेर साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुहता वै साध संग अस्तित मन पावे साधक संग माया ते बन साध संग नानक ब्रह्म सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु कै संग वहां पुनीत साध संग किस्यम नहीं बैर साधक संग ना भिंगा पैर साधक संग ना ही गो मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही गो ताप साधक संग तजे सब आप्या जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग

साधक संघ सुनो हर नाऊ सासंग हर के गुण गाऊ साधक संघ न मंदे बिसराय सासंग सरभर निस्तराय साधक संग लगे ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा सासंग भया गया कारी सासंगत भई हमारी।

ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का हो आचिंत ब्रह्मज्ञानी का धर्ममंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय ब्रह्मज्ञानी का बल बल जाइय

भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्यागे दुष्ट का संग बंते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मात उत्तम होवे भगवंत की टहल करा नित नीत मंदन अरबा विशन प्रीत हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे।

नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं, द्रवाय हर दरगे को कैसे गवाय, आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मोजते काश होए तब सु सुख नाही कोए, जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे गो बैरी भी तब लग नेचल नाही जीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छुटे, सहज घटे लक उड़ता वे तृप्त न आवे, माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे, नैत्र बतावे खप खप मरे, बिना संदोग नहीं को राजे, सुबन मनोरथ ब्रथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए।

उठाए। संत गए दुखन सुख सब जाए, संत गए दुखन नरक में पाए। संत गए दुखन मत होए मलीन, संत गए दुखन सो बात हीन। संत गए हाथे को रखे ना कोए, संत गए दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भीतर। संत गए दुखन दे मुख पवे, संतन गए दुखन काग जो लवे। संतन गए दुखन सर्व जोन पाए, संत गए दुखन त्रिगत जोन करमाए। संतन गए दुखन तृष्णा में जलय, संत गए दुखन सबको शलय। संत गए दुखन ते सब जाए, संत गए दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाम को नाहे, नानक संत भावित हुए भिगत पाहे। संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक ठिकन्ना बाई। संत का निंदक महात्यारा, संत

अष्टपदी मानो कीट एक ब्रिथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहुना तृष्णा लागे आए मारे राखे एको वा मानु कह किस नाही हाथ इसका हुक्म भू सुख होए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोहे नानक बिघन न लागे कोए उस्तद मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्म

राम नाम संतन कर पाया, राम नाम संतन कर पाया, ताज महल्यो मन मोल राम नाम हृदय में तो लावत खेप संते संग चाल व्रत्याग भिखिया जंजाल। धन धन गए सब गोए मुखूजल हर सरगे सोहे, ए बाबार बिरला बाबारे नानक ताके सत बलहारे। चरण साध गए धोए धोए पियर साधु कपना जियो, साध की धूर करो शनान साध पर जाइये कुरबान। सा सेवा बट भागी पाइये साध संगर कीर्तन गाइये,

सेकी गुर दुर्मत्म हर गुर भजन हर नाम जरा सतगुरु सिखे बंधन घाटा गुरु का सिख बिकार ते हट सतगुरु सिखो नाम धन दे गुरु का सिख भागी हे सतगुरु सिखा हरत बल सवार नानक सतगुरु सिखो जी नाल संभार है।

अष्टपदी जब कारेगाशना दृष्टेता पापुन तप कहते होता जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन जाप तब हर्क शोक हो किसे जब हर्क शोक कहो किसे व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्मता मोह का शोभत ब्रह्म अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत ब्रह्म केवल तनी ता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण ब्रह्म सह स्वभा तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरा है तब कमन ने डर कमन कत डराए अपन चलताब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चतुर्गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब गौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपिया चर्जा नानक आपन रूप आप यो बरजा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन महल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बांत कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तैर शल शेदर लगत कहो कीस जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे प्रवीण ते भेद कतेव कह गौचीन जब अपने आप उतार है तो शगन अपशगन कहा विचार है ज्ञापन उचापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल।

उदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंगार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमरीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफल।

शांतवय प्रसाद। चक्र चिहने अर वर्ण जात अर पात नहन जह रूप रंगर रेख पेह को कह ना सकत केह। अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजे कोड इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय। तिरपह महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तुवै सर्व नाम कथे कवनम।

तेरे ना चित्तर है ना मित्र है, परे है पवित्र है, अर्थी से अधिसे अदृश्य अकृष्य भगवती छंद तवै प्रसाद कहते के अछिज देसे के अपिहज पिहसे के अगंज गर्मे के अपहज भर में।

भरने के सर्वा भरने के जगतं कृति है के शत्रंग शत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपहनुपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चितरंग बहीने के अधीने करो जीर जाके

विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी एकामे कश्री छंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी मोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे लेखे पजंग प्रयाछंद नमः

भगवान सुंगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

लिख लिख पड़े ते तकड़े आ बो तीर्थ पवे ते तो लवे बो भेख किया देही दुख दिया सोह वे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जीओ महाराज साहब जी की अपार बख्शिश हो रही है। अमृत वेले दे दीवान सजे ने, सजे दीवाना च तुरकी बाणी दे कीर्तन आप जी ने गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे दर दे कीर्तनियों पासों श्रवण कीते हन। आओ जो मुख वाक साहिब महाराज जी ने साड़ी चोली पाए ने, चित वृत्तियां नूं एकाग्र करके महाराज जी दे बचन सुनदे हां तां कि अज दा जो उपदेश है असी सुन के अपने जीवन च ढाल सकीए। चित वृत्तियां नूं करो एकाग्र। शब्द और सिद्धांत बहुत विस्तार वाला है, संखेप रूप च विचार करते हाँ। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सोरठ महला पंजवा घर दूजा। सोरठ राग है गुरु अर्जन देव जी दे बचन ने, और दूसरे घर सुरताल विच महाराज जी वालों गाउण दा हुक्म है। अठ पदियां वाला पौड़ियां वाला शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महाराज जी कहिंदे ओंकार जो सारे नूं साजन वाला प्रकाशन वाला है वाहिगुरु, वो एक है सतगुरु।

कर लवे। हीरे मोती हाथी घोड़े सोने नाल सिंगार के अपनी स्त्री तक भी बंदा गिरदान कर दे। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिया हर द्वारा। अन्न जमीन कपड़े अर्पण कर दे, बहुत दान कर दे, तां भी वाहिगुरु का द्वारा।

महाराज जी कहते दीदा के दुख भंजन वाला वाहिगुरु जिदे उत्ते कृपा करता है ओदा मन वाहिगुरु की उपमा वाहिगुरु के कीर्तन के विच रत्या रहिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु भिज जांदा है, बस फिर की है, हुण पिछे कुछ नहीं रहिंदा। हुण महाराज जानन महाराज का कम जाने, जो रंगिया ही गया कोई ते पिछे की रह गया, जिनू रंग ही चढ़ गया। रहाओ दूजा, ये दूसरी बार ये शब्द च रहाओ है, कई बार कई शब्दों च महाराज साहब जी ने दो बार तीन बार रहाओ शब्द वरते ने, सतगुरु की रजा है। हुईयां भुल्लां दी खीमा महाराज मेहरामत करन सानू सब नू अपने रंग दे विच रंग लैण। हुईयां भुल्लां दी खीमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

हार सारा सदा प्रभ सिमरिया पाई दुख कल बिख काटन हार रहा तेसकी सरणी उबरै पाई जन रचिया सब कोए करण कारण समरथ सो पाई सच्चा सच्ची सोहे नानक प्रभु त्याई पाई मन तन शीतल होए सोठ

भगत गोबिंद का ए राखो पज तुम्हारी। हर जियो निमाणिया तू माण, ने चीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। जैसा बालक भाई सपाही, लख अपराध कमावे, कर उपदे झड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले औगुण बख्श लय प्रभ, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सबित जाने, ता किस पै अख सुनाइए। कहने कथन न भीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाइए। अबर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए। होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवगत मुख पाया, जन नानक सुख बसंती, सोरठ महला पंजवां। सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा, दुख कलेस सब नाठे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्ज सकले सांठे, जग जीवन नाम तुम्हारा, गुर पूरे दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतार रहाओ। तू है मंत्रे सुनह सब तू है, सब किश करने हारा, तू आपे दाता आपे भुगता, क्या हो जंत बिचारा, क्या गुण तेरे आख बखाणी, कीमत कहन न जाई। पेख पेख जीवै प्रभ अपना, आचार्य तुम है बड़ाई, तहार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सरा सरा नानक बलहारी, बाछो संतां धूरी। सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी। अपने दास को भयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करता, ऊनी बात नकाई रहाओ। करता पुरख ताल दवाया, पिछे लग चली माया, तोड़ न कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुर पावे।

श्रवण गोविंद गुण सुनो अर्गाओ रसना गीत रहाओ कर सार संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तुहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नौवां मन की मन ही माहे रही ना हर भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नौवां

जस और तार और हाव अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर नर भय पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा मेहमा नाम कहा लो बरनो राम कहत बंधन तह टूटा अजा मल पापी जग जाने निमक माहे निसतारा नानक कहत चेत चिंता मन तै पी उतरह पारा सोरठ महला नौवा प्राणी कौन उपाव कर जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हर रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करई कौन नाम गुरजा कै सिमरै भव सागर कौतरी कलम एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै और धर्मता कै समनाहन ए बेद बतावै

बारू पीत बनाई राचपच रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्ज्यो कहां गुवार। अजू समझ कछ बिगिरो नाहन भजले नाम मरार, कौ नानक निज मत साधन कौ भाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नौवां एह जग मीत न देख्यो कोई, सकल जगत अपने सुख लागे।

देखियो नर को संग छाड़ सा पागे कहो कहां या मन बावरे को इन स्यों नेहो लगायो दीना नाद सगल पाया पंजन जस्ता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों पयो न सुदो बहुत जतन मैं कीनो।

कहां पयो जो मूड मुड़ायो भगवो कीनो भेस रहो साच छाड़ कै झूठा लागयो जन्म आकार तुख होयो कर परपंच उदर निज पोखियो पसके न्याय सोयो राम भजन के गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिकियन संग बौरा नाम रतन बिसरा नरा रहे हो अचेत न चेते गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरध पछानो भूले सदा परानी सोरठ महला नौवां